मीनाक्षी मुखर्जी के स्वर में संत सूरदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं शुभा जोशी के स्वर में संत धर्मदास की ये भक्ति रचना।

स्वर गोपाल मिश्रा का था। अब सुनते हैं चंदू आत्मा और सहकारियों स्वर में ये पारंपरिक भक्ति रचना।

चंदो आत्मा और सहकर्म के स्वर में ये पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं वाणी जयराम के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना।

वाणी जयराम के स्वर में संत मीरा की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम सातों दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग जौनपुरी पर यशराज वादन सुनवाएंगे. कलाकार हैं अनुजीत राय चौधरी. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संजय कुमार मुखोपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग जौनपुरी पर यशराज वादन. कलाकार हैं अनुजीत राय चौधरी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. This morning, we present a Hindustani instrumental recital, followed by a Hindustani vocal recital. Listen first to a recital on the Yasraj in the Rag Jaunpuri. Our artist is Anujit Roy Chaudhuri. Accompanying our artist on the tabla is Sanjay Kumar Mukhopadhyay. Listen now to the rag Jaunpuri on the Yasraj. Our artist, Anujit Roy Chaudhuri.

0: अभी आप राग जौनपुरी पर यशराज वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अनुजीत राय चौधरी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे संजय कुमार मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए, हम आपको सुनाएंगे राग तोड़ी पर ख्याल गायन। कलाकार हैं भ्रमंती सरकार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आशीष मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सोमनाथ बरधान। तो लीजिए प्रस्तुत है राग तोड़ी पर ख्याल। कलाकार हैं भ्रमंती सरकार।
1: You were listening to a recital on the Esraj in the Raag Jaunpuri. Our artist was Anujit Roy Chaudhuri. Accompanying our artist on the tabla was Sanjay Kumar Mukhopadhyay. This is Raagam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a khayal. Listen to a khayal in the Raag Todi. Our artist is Vramanti Sarkar. Accompanying our artist on the tabla is Ashish Mukhopadhyay and on the harmonium is Somnath Bardhan. Listen now to a khayal in the raag Todi. Our artist Vramanti Sarkar.

0: अभी आप रागतोड़ी पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे भरमंती सरकार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे आशीष मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सोमनाथ बर्धान। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग टोड़ी। आवर आर्टिस्ट वॉज भ्रमंती सरकार। Accompanying our artist on the tabla was Ashish Mukhopadhyay, and on the harmonium was Somnath Bardhan. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत.
2: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर का ध्रुपद धमार गायन. आइए सुने राग मुल्तानी में ध्रुपद. बोल हैं बंसीधर पिनाकधर.
1: दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक.
2: इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग ध्रुपद धमार रिसाइटल बाय उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर. लिसन राग मुल्तानी इन विच यू लिसन ध्रुपद. बोल बंसीधर पिनाकधर.

0: ये था राग मुल्तानी में ध्रुपद। पखावज पर आपके साथ संगत कर रहे हैं पंडित अर्जुन शेजवार।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: कार्यक्रम को जारी रखते हुए उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग देश में धमार। बोल हैं सांवरे रंग डार दियो। दैट वाज राग मुल्तानी।
1: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
0: You are listening Dhrupad Dhamar recital by Ustad Nasir Aminuddin Dagar, accompanying him on Pakhavaj, Pandit Arjun Shezwar. In continuation of program, Ustad Nasir Aminuddin Dagar presenting Raag Des, in which you listen Dhamar, Bol, Saunre Rang, Dar Diyo.

0: ये था राग देश में धमार। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर का ध्रुपद धमार गायन। पखावज पर संगत कर रहे थे पंडित अर्जुन शेजवड़। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: दैट वॉज राग देश। With that, we conclude Dhrupad Dhamar recital by Ustad Nasir Aminuddin Dagar, accompanied him on Pakhavaj, Pandit Arjun Shezwar. This was the contribution of AIR Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पूरिया कल्याण. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं आज सो बना ब्याहन आया, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं मोरे घर आजा. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. We now have for you a vocal recital by Mujahid Hussain Khan. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the harmonium by Ashok Kumar. Mujahid Hussain Khan first presents rag Puriya Kalyan, in which you will hear the Vilambit Khayal set to Ek Tal, and this will be followed by the Chhota Khayal set to Drut Teen Tal.

0: अभी आप मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पुरिया कल्याण सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने। और लीजिए अब सुनिए राग मालकौंस। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं पीर न जानी बलमा, और तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग पुरिया कल्याण। कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल, वी नाउ हैव मुजाहिद हुसैन खां प्रेजेंटिंग राग मालकौंस, इन विच यू विल हियर द बड़ा ख्याल सेट टू विलंबित एक ताल, फॉलोड बाय अ तराना सेट टू तीन ताल।

Then I get the

इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविंद भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीशंकर भगवतः कृतौ गणेशभुजः।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये रागम DTH चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुने पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी वादन, प्रस्तुत है राग पूरिया। विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
2: रागम 24/7 DTH Anytime Indian Music. Listen to Hindustani Classical Flute Recital by Pandit Nityanand Haldipur. Presenting Rag Puriya, Vilambit Gat, set to Ektal, and Drut Gat, set to Teental.

0: ये रागम डीटीएच चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। अभी आप पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी पर बजाया राग पूरिया सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सदानंद नायमपल्ली। अब सुनिए पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी पर बजाया राग हेमंत, मध्यलय गत झपताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
1: This is Ragam 24/7 DTH, anytime Indian music. You're listening to Rag Puriya by Pandit Nityanand Haldipur on flute. Accompanying him on tabla was Pandit Sadanand Nayampally. Continuing the concert, now listen to Rag Hemant on flute by Pandit Nityanand Haldipur. Madhyalay Gat set to Jhaptal, Drut Gat set to Teen Tal.

अभी आप पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी पर बजाया राग हेमंत सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे ओंकार गुलवाड़ी। ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है। हर दिन हर पल भारतीय संगीत।

0: आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सुरजीत साहा, हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रतन भट्टाचार्य। तुलजे प्रस्तुत है राग बसंत मुखारी में सरोद वादन। आज ये कलाकार सुप्रियो बंदोपाध्याय।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल्स। Listen first to a sarod recital in the rag Basant Mukhari. Our artist is Supriyo Banerjee. Accompanying him on the tabla is Pandit Surajit Saha and on the harmonium is Ratan Bhattacharya. Accompanying him on the tabla is Surajit Saha and on the harmonium is Ratan Bhattacharya. Listen now to a sarod recital in the rag Basant Mukhari. Our artist is Supriyo Banerjee.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बसंत मुखारी में सरोद वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे सुप्रियो बंदोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुरजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन भट्टाचार्य। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग मालकौंस में सितार वादन। आज के कलाकार हैं शिखा नाथ। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सुब्रत गुप्तो। तो लीजिए प्रस्तुत है राग मालकौंस में सितार वादन, कलाकार शिखा नाथ।
1: You were listening to a sarod recital in the rag Basant Mukhari. Our artist was Shupriyo Banerjee. Accompanying him on the tabla was Surajit Saha and on the harmonium was Ratan Bhattacharya. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sitar recital. Listen to a sitar recital in the rag Malkosh. Our artist is Shikha Nath. Accompanying our artist on the tabla is Shubrato Gupta. Listen now to the rag Malkosh on the sitar. Our artist, Shikha Nath.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मालकौंस में सितार वादन सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी शिखा नाथ, आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुब्रत गुप्तो। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Malkosh. Our artist was Shikha Nath. Accompanying our artist on the tabla was Shubrata Gupta. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज प्रस्तुत है वायलिन पर राग देवगिरी बिलावल. कलाकार है सुजीत देवघरिया. विलंबित ख्याल एक ताल तथा द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अरूप चैटर्जी.

ये है रागम 24 घंटे सातु दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे सुजीत देवघरिया का बजाया वॉयलिन पर राग देवगिरी बिलावल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया वॉयलिन पर राग श्याम कल्याण। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, मध्य लय बंदिश एक ताल में निबद्ध है तथा द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं अरूप चैटर्जी।

अभी आप सुन रहे थे सुजीत देवघरिया का बजाया वायलिन पर राग श्याम कल्याण। हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे रतन सिन्हा द्वारा बजाया सरोद पर राग भटियार से। द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे रतन सिन्हा का बजाया सरोद पर राग भटियार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रमोद कुमार मिश्र। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सारंगी वादन. कलाकार हैं सरदार खां, राग है जौनपुरी. विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार हैं तबले पर राम स्वरूप रतौनिया. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सारंगी रेसाइटल बाय सरदार खां. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग जौनपुरी. द एकॉम्पैनमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय राम स्वरूप रतौनिया ऑन द तबला.

अब आप सुनेंगे सरदार खां का सारंगी पर बजाया राग गांधारी, तबले पर संगत की है हफीज खां ने। नाउ लिसन टू द राग गांधारी बाय सरदार खां ऑन द सारंगी। तबला अकॉम्पनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हफीज खां।

आप सुन रहे हैं सारंगी वादन, कलाकार हैं सरदार खां। यू आर लिस्निंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे दादरा धुन। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स अ दादरा धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी सारंगी वादन, कलाकार थे सरदार खां, संगत कलाकार थे तबले पर रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वे लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग गुर्जरी उड़ी. तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ सितार रिसाइटल बाय प्रतीक चौधरी. ही कंपनीड ऑन द तबला बाय रफीउद्दीन साबरी. प्रतीक चौधरी फर्स्ट प्रेजेंट्स राग गुर्जरी तोड़ी.

0: अभी आप सुनिए प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। तबले आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग गुर्जरी तोड़ी। प्रतीक चौधरी कंक्लूड्स सितार रिसाइटल विद राग शुद्ध सारंग।

0: अभी आप प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल बाय प्रतीक चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है भारतीय संगीत का रागम DTH चैनल. हर दिन हर पल भारतीय संगीत. संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है. स्वर है मलय बनर्जी का, बोल है विनती सुनो मेरी.

आप सुन रहे हैं रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए अब सुनिए उषा मंगेशकर के स्वर में संत रैदास की रचना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।

संजीवनी बैलांडे के स्वर में आइए अब सुना जाए संत मीराबाई की ये रचना, तुम मोरी राखो लाज हरी।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। सविता बनर्जी की आवाज में आइए सुनते हैं गुरु नानक की रचना, बोल है एक सहारा है तुम्हारा।